नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ आयाम, गीत एल्बम अधुरो सपना, शब्द लय सुर विनोद कुमार नेउपानेको पीआरबीटी 7045-8552।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको ठिक एक बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा रातको ठिक 9 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।